उपदेश ज्ञान अंजन दिए नेत्री जगत ने हालिया फसल छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रिया सतगुरु है बहता लेकिन बेचारिया कर कृपा।

जाए निरस कित फल पिके फुल बक बके कम ना आवे पत मिटत नीवी नानका गुण चंगियाँ तत सब को।

0: एक ने आस की दूजे लगे जाए, नानकस कंडी है सदी रे समाए, चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा होए, आस क्यों ना की है जे लिखे वते सोई महला दूजा।
1: सलाम जवाब दो मैं करे मुंडो।

अपनी हता का परवार आप रे साकल ग्रा प्राय मार एक नगली निंदिरी एक पिछले बिसियार आप रे कर या भुके शुक्र पुकार नानक न जिंतिया फिर से कहूं का।

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद चक्र चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह न सकत कहे अचल मूर्त अनुभव प्रकाश अम तोज कहि जै कोट इंद्र इंद्राण साहि सहाण गण जै त्रिपावन महीप सुर नर सुर नेत नेत बन तृण कहत त्व सर्व नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत समत जब लो नहीं भाग ललार उदय तब लो भ्रम ते फिरते बहुतायो कल कोर समुद्र में बूढ़त थे कबहू मिट है नहीं रे पछतायो ताति विचार यह मथुरा जग तारण को अवतार बनायो जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो गुरसिख भलके उठ कर अमृत वेले सरना बंदा गुर कै बचन उचार कै धर्मशाला दी सुरत करंदा साध संगत विच जाए कै गुरबाणी दे प्रीत सुनंदा संका मनोहो मिटाए कै गुरसिखां दी सेव करंदा किरत विरत कर धर्म दी लै प्रसाद आन बरतंदा गुरसिखां नों दे कर पिछों बचिया आप कबंदा कली काल प्रगास कर गुर चेला चेला गुर संदा गुरमुख गाड़ी राह चलंदा रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला नाम जपंदड़ी लाली पंद जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा गुरदर्शन देख निहाली सो कहो टल गुर सेवी है।

सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला पंजवा। सतगुर पूरे पाणा ता जपया नाम रमाणा। गोविंद कृपा तारी प्रभ राखी पैज हमारी। सतगुर पूरे पाणा

बिखट गौरी लाथी, संग मलाए लिया मेरा करता, संत साध पै साथी, कर गहलीन सर्बस दीने,

पौड़ी वड्डी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे वस तेरा कर भला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर माण महत्ता।

0: माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाच धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़ै कै दूर
1: जिनी नाम ते आया गए।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई। हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूरन होय चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहै हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम कावहो, आप हाथ दै मोहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दै करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोरे भजन की रहै प्यासा। तुम है शाड कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहौं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है। आप हाथ दै मुझे उबरिया, मरण काल का त्रास निवरिया। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुज जू करियहो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारी, साहेब संत सहाय प्यारी। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता। काल पाई ब्रह्मा बाप तरा, काल पाई शिव जू अवतरा। काल पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जशन उपजायो। आदि अंत एकै अवतारा, सोई गुरु समझियहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाने, काट काट के पाट पाट की जाने। जब उदकरख करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जब आकरख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन सृष्टि सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत बीद पीद अर आलम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आदि अनिल अनाद असंभ।

सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कह हम एक न जाने ओ श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे ओ सब तो हे बखाने ओ दोहरा

0: Fíjate,
1: बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाय। तेग बहादुर सिमरै घर नौ निधि आवै ताए। सब थाई हुए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी। सब थाई हुए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ। दीदार दा

बलहारी गुर आपने द्योहाड़ी साधवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर कौ बाल बाल जाइए आप मुकत मोहितार तिस मिलिए सतगुर सज्जन जिस अंतर हर गुणकारी तिस मिलिए सतगुर प्रीतमै जिन हौ मैं विच हौ मारी सो सतगुर पूरा धन धन है जिन हर उपदेश दे सब श्रेष्ठ सवारी नित जपियहु संतहु राम नाम पौ जल बिखतारी गुर पूरै हर उपदेसिया गुर विटड़ियहु हौ साधवारी नेह चलनी उतराइयोन साध संगत सच खंड समेयो गुरमुख पंथ रचायोन सुख सागर बेअंत अमेयो सच शबद आराधिया सच शबद आराधिया अगम अगोचर अलख अपिहेयो चहु वर न उपदेश दा छेय दर्शन सब सेवक सेयो मिठा बोलन नेव चलना

0: भरपूर दिसै जत कथा नानक दा संदास तुदिया गए बिनवता।
1: श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दाई दाया खेलै सगल जगत

अमृत शौड़ बिख बिख खाई, माया मोह परम पै फूले, सुत दारा सियो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखहु शरणाई।

कुरसोह चटीय तुद डठे सच पातशाह मल जन्म जन्म दी कटीय सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह जिस पास बैठिया सोही सबना दावे साहो सत

अथ उथ रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप रखे कट कट शब्द सुपख एथ ओथ रखवाला प्रभ सतगुर दीन दयाला दास अपने आप रखे कट कट शब्द सुपख

दिन सरण सास सास संभाली, पूरन सबनी थाई, रहो आप सहाई हो। सच्चे दास सच्चा ढोआ, तेरी भगत बढ़ियाई, पाई नानक प्रभ शरणाई। आप सहाई होआ, सच्चे दास सच्चा ढोआ, तेरी भगत बढ़ियाई, पाई नानक प्रभ शरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्म, हस्त काया रखिया परमेश्वर, आत्म रखिया गोपाल।

दंडौत वंदन अनकबार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ।

0: शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने भयो नानक ता कदास है। सोई निरंजन देव महला दूजा।
1: हे कृष्ण सर्व देवा देव देवा ता आत्मा, आत्मा बास देवस्य जे को जाने पेयो नानक ता कदास है। सोई निरंजन देव महला पहला।
0: कुंभे बद्दा जल रहे जल

0: ज्ञानी विजेता है। सात जुगरा संतोखा धर्म ग्रथवा हो त्रे तेरा जते का जोर ग्रथवा द्वापर रत पे का सत ग्रथवा काल जुगरा थगन का कूड़ के रथवाओ भला पहला
1: शाम का स्तंभ स्वामी सच में अच्छे सह रहे सब कुछ सच समावे ऋग कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैसूर नायले प्राशित जाहे नानक तो मुखंतर पाहे जुज में जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी ले आया वृंदावन में रंग किया कल में वेद अतरमण हुआ नाम खुदा ये लो भया नील वसले कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सच्यार पढ़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी सदाई ओ नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु।

सगल पवन तारे एक थे किए विस्तारे, पूर रहो सर्व में आप है निरारे, हर गुण नाही अंत पारे, जी जंत सब थारे, सगल को दाता एक है अलख मुरारे, आप ही तारण तारे, कुदरत है देखारे, वर्ण चहन नाही मुख नाम सारे, जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार, एक जी क्या बखाने हाँ के बल बल बल बल सद बलिहार, संसार अगम सागर तुल्हा हर नाम गुरु मुख पाया, जग जन्म मरण।

0: गुण गावे नवनाथ तन गुरु साज समायो माँ दादा गुण रवे जेन चक्कर वै कहायो गुण गावे बलरा सपत पताल बसंतो पर सरगुण उच्चर सदा गुर संग्रहंतो दूर बापुरु रंगर गुरु नानक जस गायो कब कास जस नानक गुर कट कट सहज समायो कवन जोग कौन ज्ञान ध्यान कवन विस्तृत करिए सिद्ध साधक तेती सकोर तेर कीम न परिए ब्रह्मा दर्शन कार से गुणंत न पाए अगौ ग्यो नहीं जाए पूर सर्वरो समाए जे काटी सिलक दयाल प्रभ से जन लगे भगते हर गुर नानक जिन परस्यो ते इत उत सदा मुक्ते
1: आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे सर्व रहयो परपू।

अजय गंग जल अटल सिख संगत सब नावे नित पुराण बाचिए वेद ब्रह्मा मुख गावे अजय चवर सिर टुले नाम अमृत मुख लियो गुर अर्जुन सिर शत्र

0: कवण कह श्री गुर मोयो।
1: गुरु मुख देख गुरु सुख पायो, हुती जो प्यास पीयूष पीवन की, बंशत सिद्ध गो बिद मिलायो। पूरन पौ मन ठोर बसो, रस बासन स्यो जो दहन दिस्तायो। गोबिंद वाल गोबिंद पुरी सम, जलन तीर

0: तेरी सब रचना।
1: ब्रह्मादिक शिव शांत मुनीसर रसगरसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंद्र खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख देव अर दानव इक तिल ताको मर्म न पावत प्रिया प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती हर जन ताके दर्श समावत तिसे त्याग।

फूले सोते दारा से प्रीत ले एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेरे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ।

विया अहने सहज सुभाई दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवे सिफत खसम दी नूर अर सहो कुर सहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहदै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहदै साहु जिस पास बैठिया सोहिया सब नादा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी सलोक क्या सुनेंदो कूड़ वन्यन पवन चुलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच तनी क्या सुनेंदो कूड़ वन्यन पावन चुलारिया नानक सुनियर ते परवान जो सुनेंदे सच तनी शांत तिन कोल कुमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया राम से सहज सुहिले जिन हर हर रसना भणिया राम से सहज सुहेले गुण अमोले जगत उदाहरण आई पै बोहित सागर प्रभ चरणा केते पार लगाई जिन कौ कृपा करी मेरे ठाकुर तिन का लेखा न गणिया कहो नानक तिस कोल कुमाई जिन प्रभ श्रवणी सुनिया सलोक लोइन लोई डिठ प्यास ना बुझै मूकणी नानक से अखड़ियां बेयाने

ठाकुर अपने पाने कहो नानक जिन हारे प्रभ डिठा तिन कै साध कुर्बाने सलोक

पुरख करते आप आप जानिए तह सुन सहज समाद लागी एक एक वखाणिए आप गुप्ता आप मुक्ता आप आप वखाना।